0: गरिन्छ।
1: ग्रीस बेकरी क्याफे गोर्खा नगरपालिका छ, हरमटारी गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-658, मोबाइल नम्बर 97-69-4-91-403।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2420-670, मोबाइल नम्बर 98460।